पेट न जावे उच्चारण करो श्री वाहेगुरु, क्योंकि ये रविदास भगत जी पूर्व जन्म विखे ब्राह्मण सन, रामानंद जी दे पास रह के सेवा करदे हुंदे सन, रोजाना सत्तां घरां दी भिख्या लैके रामानंद जी नूं छकाउंदे सन। एक दिन बड़ी वर्खा पै रही सी, तदों एक ही जगह तों अन्न लिया के छकावना कीता। इस वेले रामानंद जी समाधि विच बैठे तां आपदा मन नहीं जुड़िया ते पुछण ते फिर दस्या, महाराज अज इक्के

है दुखत अर दीन परचीन लग दीन दुख पंजन बिरद बिरद आयो है जो ब्रशे अर्क सुत नरक निवासी भये नरक निवारण जगत जस गायो है।

रब दा सुनेहा देते हन भाई आओ जुड़ो सच दे नाल ए दुनिया दे लोको क्यों परमा भुलेखिया विच पए हो एक परमेश्वर दा नाम सच है ओदे नाल जुड़ो आपे ही सारे पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। ते इसलिए भगत रविदास जी कहंदे ने तुम जो नायक आशो अंतर जामी प्रभ ते जन जनीजै जन ते स्वामी। तो असी भी कोई सेवा कर दिया।

आवाज आई कि इस धरती ते बड़िया पवित्र नदियां दरिया हन, आ समुंदर दा जल तेरे हाजिर है, एक बूंद ले इतना तरस रे, इतना व्याकुल हो।

महत्वपूर्ण सीमा तक के कहे कि सन्माने निमाण निकाले निकान संकट संस्था की हजूरी देखकर बड़ी अच्छी के दिलाब में बैठी दूर का संजीव आपकी सरकार के काबिल हो जो आपकी जिंदगी दे इतने अहम करे मसलियां तो आपकी मुस्तफा कटिया जो आपकी ने छोट लेकर आपको उत्तर बाद में जाना है एक गल नारी आज हो गई सब कुछ टूट पैंट आगे हो गई थे पैसा जी ने आपने बड़े अंदाज राज उस हिंदी से गलत गलत की हम सच संजीव विद्वान लोग बैठे कंकन जी रंजीत सिंह साहब जी रशिया साहब जी कान जी मेरे जी अजिंदर सीतल सिंह जी बैठे हैं सच संजी जो संगीत है गाँव का एक गलत नहीं मजबूत बिल्कुल गलत नहीं ये कन्नड़ गल पै गई नहीं कदम इन्हें राजी हो गए इन्हें राजी नहीं सिर्फ बढ़ने ये गल का मजबूत न बन गल है आज गल है मेहनत जिन की सुपारत है जिला मर्जी करता है एक कर्म का कर्म है गल का कोई मजबूत नहीं जिन्हें करना है उन साधन की होगी नहीं मिलनी पहली गल साढ़े तेरे अखर लग गया है ये तो आड़ है सच हिंदी पैसा जी कहा तो खाली बकरा बिल्कुल नहीं मिलता सी इस तंत्र जी गल तो ठीक है मैं दो गल कह के सच हिंदी दुनिया के दो फांड आठ हैं तीजा दुनिया के काम कोई दो कड़े काम गाँव के पेंटिंग पेंटिंग का वजूद बन गया गाने का कुछ स्वरूप नहीं ना शब्द का स्वरूप है ना आ का स्वरूप है ना परमेश्वर ये पहले की बात है जब जो सू समझ है कि कीर्तन की है तो फिर तो साधन की आवाज की लड़ नहीं झगड़े की लड़ नहीं झगड़े खत्म हो जाएंगे राज पच्चीस मिनट टाइम है राज तकरीबन 20-22 मिनट अभी समाप्ति करेंगे सब की चीज है आपे खुद चेला है आपे आपे हर सब चोट बनाने राग तकलीफ है यत्न करेंगे क्या भी नहीं कह सकते ये बहुत महान बात है अच्छी आते हैं कि बिल्कुल प्रतीफ है आओ आपकी मदद एक बात मैं पूछ सकते भी कब तो नतीजे को वाहे

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय दे रागां विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक करुणा का राग है, पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियां का प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग का मजमून स्पष्ट कर देता है। सिद्ध गोष्ठ रामकली सद अनंत साहब दी बाणियां इस राग विच हन। ओंकार दी बाणी विच जो दक्षिणी तर्ज ते है, प्रभु दे करता पुरख होण दा विश्वास दृढ़ करवाया है। आनंद दी प्राप्ति लई आनंद साहब विच अध्यात्मक धार्मिक अते मनोविज्ञानक उपदेश दिते हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषव अते ध्यावत कोमल दोनों मध्यम अते दोनों निषाद लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध हैं। इस राग दे आरोह विच ऋषव स्वर का त्याग किया जाता है। इस दे गाउण दा समा दिन दा पहला पहर है। रामकली राग विच जिन्हां दो शब्दों का कीर्तन सरवण करोगी वह हैं, पहला रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर कै शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार। यह गुरु अमरदास पिता का उच्चारण किया शब्द है अते इस नूं राग विच गा रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। दूजा शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। इस नूं गा रहे हैं बीबी गीता कौर पेंटल जी। पहला शब्द सरवण करो, रामकली राम मन वसिया ता बनिया सीगा।

इष्ट दर्शनी शब्द श्रुति ही बुद्ध बल ही सुतो हस्त न पावल चित्त ही।

0: कहूं बेदरीत कहूं तस विपरीत कहूं ते गुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो।
1: ते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज दा अज एक होर स्वरूप, क्योंकि अकाल पुरख दे कई रूप ने ते उस दे रूप कथन नहीं कीते जा सकते। कतों ते सचेत रूप होके चेतन अवस्था विच तुरिया फिरदा है, कतों अचेत होके सुता पिया, किते भिखारी बन के भीख मंगदा फिरदा है, ते किते महादानी होके दान करदा फिरदा है, कहूं महाराजिया नूं दान देंदा फिरदा है, ते कहूं वड्डे वड्डे छत्रपति महाराजिया कोलों धरती खो लैंदा है, किते ओ वेद दा रूप बन जांदा है, किते ओ तिन्ना गुणा दा रूप बन जांदा है, किते ओ सर्व गुणा दा सपन्न वाहिगुरु मालिक होके ते संसार दे अंदर नजर आउंदा है। ओ अकाल पुरख दा रूप अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे स्वरूप जो आप जी पास कल दे पहुंच चुके ने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र स्वरूप जेडे जागदी रूप जागदी ज्योत है, ओ अज श्री गुरु गुरुद्वारा साहिब जी दे अंदर श्री गुरु नानक सतसंग साहिब विखे सुशोभित हैं। उन्हां स्वरूपां नूं आपां सचखंड विखे लैके जाना जो महाराज साहिब जी दा असल अस्थान है, उथे विराजमान कराउणा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सिखां दे गुरु नहीं बल्कि सारे संसार दे सांझे गुरु हन। सारे संसार दी बाणी सारे संसार दा भरम दूर कीता गुरु ग्रंथ साहिब अंदर सच दे नाल जोड़िया है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने, ते सच दी आवाज नूं हमेशा बुलंद कीता। इस दे विचों केवल सच ही सच लभेगा, संसार दे पदार्थ मिले लभणगे, बड़ियां बड़ियां वस्तुआं इस दे विचों लभणगियां, साइंस इस दे विच है, संसार दी फिलासफी इस दे विच है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर केवल नहीं थां ते एक चीज नूं नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर झूठ नूं थां नहीं, इस दे विच झूठ नहीं है। केवल संसार दी एक वस्तु नहीं गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर ओ झूठ नहीं, बाकी सब वस्तुआं संसार दीआं लभ लो इस दे विचों पवित्र स्वरूप है, जागदी ज्योत है, इस दे विचों जिहड़ी वस्तु लभोगे, क्योंकि रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम, बड़े बड़े पदार्थ ने लभण दी लोड़ है, लभ जाणगे मिल जाणगे वस्तु प्राप्त हो जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक ऐसा पावन गुरु है। आओ क्योंकि 8 बजे समाप्ति करके उस तों बाद आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूपां दी सेवा करनी है, ते सेवा करनी है शुद्ध मन नाल। ऐसे गुर को बल बल जाइए, रसना दे उपर साडे ए पंक्ति होवे, शीस उपर साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पवित्र स्वारा होवे, ते कहिए महाराज तू ते मुक्त है, सानू मुक्त कर दे, असी मैलां दे भरे होए हां, पापी जीव हां, सानू मुक्त कर सतगुरा, तेरा पवित्र स्वरूप जिस दे शीस दे उपर आ जावे उस दे अंदर संसार दीआं मैलां रह जाण, महाराज तू मुक्ति दा दाता है, आप मुक्त मोहे तारे, मैनू तार लै संसार दे बंधना तो मुक्त कर दे। पूर्ण श्रद्धा दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन स्वरूपां दी सेवा करनी है, हाथ सुचे करके जोड़े ला के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे अरदासा करके, भई अज पवित्र गुरु दा संग हो रहा, पूर्ण गुरु दा संग हो रहा, किते महसूस करो, किते यार दे दोस्त दे नाल जिंदगी बतीत करनी होवे ना, किसे यार दोस्त दे नाल एक पल भी बतीत करन विच आ जाए बड़ा सुकून मिलदा। अज गुरु दे नाल वेखिए भी ए सतसंग कीता होया किन्ना सफल हुंदा, किन्ना सुखदायक हुंदा, किन्ना रिलैक्स मिलदा, किन्नी साडी जिंदगी दे अंदर परिवर्तन आउंदा। आओ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तो बलिहार जांदे होए